0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: सुप्रभात, नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और उस कोलकाता के द रियल रेडियो 107 एफएम रेनबो पर ढेर सारा प्यार और अपनेपन के साथ हाजिर है आपकी आज फ्रेंड्स सुलक्षणा पर्वत लेकर आपका ही पसंदीदा मॉर्निंग शो नॉनस्टॉप गपशप। तो ऐसा है दोस्तों कि आज नॉनस्टॉप गपशप में किस विषय पर बात करूंगी? अजी, ये वो विषय है ना जिसमें हर किसी की बात होगी, हर किसी की, चाहे वो क्यों ना मैं अकेले ही वो सारी बातें कह जाऊं, लेकिन आपके दिल को छूते हुए जाऊंगी, क्योंकि ये है चैनल दिल से दिल तक वाला, यानी कि हमारा और आपका कनेक्शन होता है दिल से दिल तक। तो फिलहाल शुरुआत करना चाहूंगी इस कार्यक्रम को सुनिधि चौहान की आवाज में। सुनिए इस गीत को, और इस गीत को सुनते सुनते हम क्या करें, शुरुआत करें नॉनस्टॉप गपशप की, क्रेजी की। यारे

ऐसा है दोस्तों कि आप ही सोच रहे होंगे ना कि सुलक्षणा मतलब कौन सा विषय लेकर आई है जिसमें आप सभी की भी बातें शामिल है, उन बातों में जो कि सुलक्षणा कहेगी। अजी आपके दिल में जो बात है ना वो मुझ तक पहुंचती है, क्योंकि ये चैनल ही है दिल से दिल तक, यानी कि हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड रहता है, कनेक्शन होता है। ऐसे में जो आप सोचेंगे वो मैं समझ जाऊंगी। वैसे मैं बात कर रही हूं, मतलब मैं अच्छी अच्छी बातें करती हूं हमेशा से, ये मैं ही नहीं आप भी मानते होंगे। अब बात है शौक की। अब ऐसा भला कौन होगा दुनिया में जिसका कोई शौक ना हो। अजी शौक जो है ना वो कई तरीके के होते हैं, कई तरह के होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं, है ना। और सभी हॉबीज के फ्लेवर अलग होते हैं, मतलब क्या बताऊं, समय अलग होता है और उम्र भी अलग होती है। खाली समय में की जाने वाली रचनात्मक और आनंददायक गतिविधियां जो हैं उसे ही हम शौक कहते हैं, हॉबीज कहते हैं। इन्हें मुख्य रूप से आप रचनात्मक जैसे कि पेंटिंग, राइटिंग, लेखन, शारीरिक हॉबीज की बात करूं तो खेल, योग, बौद्धिक की बात करूं तो पढ़ना, पहेलियां और संग्रहणीय यानी कि डाक टिकट, कलेक्शन की बात करूं। बहुत सारे लोगों को जो है ना वो कलेक्शन करने की शौक होती है, सिक्के कलेक्ट करते हैं, डाक की टिकटें कलेक्ट करते हैं, और मतलब क्या कहूं, इस पे ढेर सारी बातें करूंगी। लेकिन फिलहाल अगला गाना सुनते हैं, भागे रे मन, सुनिधि चौहान की आवाज में।

ऐसा है दोस्तों कि अगर हम टाइप्स ऑफ हॉबीज की बात करें तो कितनी सारी हॉबीज है, अचानक तो आपके भी दिमाग में नहीं आएगा। और जो हॉबीज आपके हैं वो तो है ही हैं, लेकिन कभी कभार हमें ऐसा भी सोचना चाहिए कि जो हमारी हॉबी है जरूरी नहीं कि वो हमारे घर में हमारे बच्चों की हो, हमारे छोटे भाई बहन के हो। तो हमें कभी ये नहीं फोर्स करना चाहिए कि जो हमारी हॉबी है वही उसी हॉबी को तुम भी अपनाओ, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का अलग से शौक होता है। अगर मैं टाइप्स ऑफ हॉबीज की बात करूं तो अगर रचनात्मक क्रिएटिव की बात करूं तो चित्रकारी, पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, कैनवस पेंटिंग, लेखन की बात करूं तो कहानियां लिखना, कविताएं लिखना, डायरी या ब्लॉग लिखना, खाना बनाना भी बहुत लोगों का शौक होता है, कुकिंग करना, बेकिंग करना, नई रेसिपी ट्राई करना, शिल्पकारी की बात करूं तो क्राफ्ट्स की यानी कि क्राफ्ट वर्क करना और अलग अलग DIY प्रोजेक्ट्स तैयार करना, संगीत की बात करूं तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना भी कईयों का शौक होता है, चाहे वो गिटार हो, पियानो हो, तबला हो, ढोलक हो, गाना गाने का शौक, डांसिंग का शौक, विभिन्न डांस फॉर्म सीखने का भी शौक होता है, कुछ लोगों को फोटोग्राफी का शौक होता है, तस्वीर खींचना, और कुछ लोगों को फिजिकल एक्टिविटी का शौक होता है, खेल कूद स्पोर्ट्स में, किसी को रुचि फुटबॉल में तो किसी को बैडमिंटन में, किसी को टेनिस में। व्यायाम की बात करें फिटनेस की तो कोई योग, कोई जिम्नास्टिक, कोई दौड़ना, रनिंग, तैराकी, स्विमिंग करना, गार्डनिंग करना। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ट्रैवलिंग करना पसंद है। और फिलहाल हम आपको लेके चलते अगले गाने के जरिए खंडाला। क्यों, कुछ याद आया?

अब जब मैं अलग अलग शौक की बात कर रही हूँ तो बहुत सारे लोगों का जो शौक होता है वो यात्रा करना होता है, यानी कि ट्रैवलिंग करना होता है, और ट्रैवलिंग इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लर्निंग। और ऐसा है कि नई जगहों पर घूमना जो है बहुत लोगों को बहुत पसंद आता है। शायद ही कोई होगा जो घूमना फिरना पसंद नहीं करता होगा। वैसे मुझे भी घूमने का बहुत शौक है, और इसीलिए म्यूजिकली मैं आपको लेकर गई खंडाला। वैसे कैसा लगा आपको खंडाला में, ये तो आप ही बताएंगे। बाय द टाइम यू टेल मी आपको कैसा लगा, मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे बढ़ते हुए आपको बताती हूँ कि बहुत सारे लोगों के ना इंटेलेक्चुअल शौक होते हैं, बौद्धिक शौक, पढ़ना, लिखना, किताबें पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, और कुछ लोग तो उनसे भी जरा इंटेलेक्चुअल शौक रखते हैं, जैसे पजल्स सॉल्व करना, सुडोकू, क्रॉसवर्ड हल करना। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जी दुनिया में जिन्हें अलग अलग भाषाएं सीखने का जो है शौक होता है, लर्निंग लैंग्वेजेस, नई भाषाएं सीखना। अब जब नई भाषाओं की बात कर रही हूं तो आजकल ना कहते हैं कि अंग्रेजी में बात करो तो वो भी एक स्वैग वाला मामला होता है, तो फिर मैं क्यों ना आपको अगला गाना सुनाती हूँ फिल्म कृष्णा से। पूरा का पूरा गाना अंग्रेजी में है लेकिन फिल्म हिंदी है।

0: dreams.
1: मोटी तौर पे मैं बता दूं कि इस गाने का जो मेन मकसद था और मेन सब्जेक्ट था या मेन बात थी वो ये था कि माय विश कम्स ट्रू। लेकिन मैं 107 एफएम रेनबो पर दिल से दिल तक वाले चैनल पे यही कहूंगी कि सभी के विशेस जो हैं वो सच हो जाएं। एवरीबॉडीज विशेस कम्स ट्रू। This is the wish I wish for all the listeners listening to the program. 107 FM Rainbow पर जितने भी लोग सुन रहे हैं ना दिल से दिल तक पर non-stop गपशप, आप सभी के सपने पूरे हों। और फिलहाल हम बात कर रहे हैं शौक की, तो मैं क्या बताऊं, मतलब ये इंटरनेट के ज़माने में ना इंटरनेट सर्फिंग करने का भी बहुत लोगों को शौक होता है। और क्या बताऊँ, जब से ये स्मार्टफोन आ गया ना, एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन, क्या बताऊँ, हर किसी को अगर ना भी कहूँ तो ज़्यादातर लोगों को एक नया सा शौक लग गया था। और वो शौक कभी कभी शौक में डाल देता है। अजीब वो शौक कोई अलग सी बात नहीं है, वो है सेल्फी वाला शौक। तो चलिए बजरंगी भाईजान से सुनते हैं सेल्फी ले ले रे, विशाल ददलानी, नक्श अजीज और प्रीतम की आवाज।

0: चुटकी नुस्खे।
1: एक चुटकी नुस्खे में मैं आज यही कहूंगी कि दोस्तों, जैसे कि मौसम बदल रहा है, आप देख रहे हैं कभी बारिश कभी धूप, कभी ठंड लग रही है तो कभी आप फैन ऑफ कर रहे हैं कभी ऑन कर रहे हैं, मौसम बदल रहा है। और ऐसे वेदर चेंज में जो है ना, अक्सर हमारी बहुत सारे लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो आप इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर क्या करें। अगर आप, अक्सर तो लोग कहते हैं कि दूध हल्दी लो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर समय हर दिन दूध जो है वो उपलब्ध ही हो। अगर घर में दूध ना हो तो आप क्या करें, एक कप पानी ले, साफ पानी ले और उसे बॉयल कीजिए। उसमें जो जो छोटी वाली चम्मच होती है ना, टीस्पून, उससे आधी चम्मच आप हल्दी पाउडर ले। अगर कच्ची हल्दी हो और उसे आप ग्राइंड करके ले तो वो और भी बेहतर है। और 4-5 दाने गोल मिर्च को क्रश करके उसे बॉईल कीजिए चाय की तरह, और उसके बाद एक एक सिप लेकर उसे पीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि सर्दी खांसी बुखार सब उड़न छू। तो कैसा लगा ये नुस्खा जरूर बताइएगा। बाय द टाइम मैं आपको आगे बढ़ते हुए ये भी बताना चाहूंगी कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि सुलक्षणा, हम मतलब बहुत सारे शौक की बात की और तुम्हारा भी तो कोई शौक होगा। तो मैं बता दूं कि मेरा शौक यही है कि मैं जहां से भी गुजरूं, जहां भी जाऊं, वहां खुशियां बिखेरते रहूं। और शायद यही कारण है कि मैं सबसे कहती हूं, आग्रह करती हूं कि आप जहां भी जाएं खुशियां बिखेरते रहिए, क्योंकि खुशियों के फूल जितना खिलेंगे, चाहे जिन राहों से भी आप गुजरें, उन फूलों की खुशबू आप तक जरूर किसी न किसी रूप में पहुंचेगी। तो इसी बात पर आपको मैं सुनवाती हूं अगला गीत, सुनिधि चौहान की आवाज।

0: आज के दिन।
1: जी हाँ दोस्तों, समय हो चला है कि अगले सेगमेंट आज के दिन का मैं जिक्र करूं, यानी कि 5 मई की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का। तो बता दूं कि 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और समाजवाद के प्रेरणता कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट का निधन हुआ था 1821 में। फ्रांस के महान सम्राट नेपोलियन ने सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासन के दौरान दुनिया को अलविदा कह गए। और बात करूं 1862 की, तो सिंको डी मेयो मैक्सिको में 1862 में प्यूबला की लड़ाई में फ्रांसीसी सेना को हराकर अपनी स्वतंत्रता और एकता का प्रतीक ये दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस को याद किया जाता है। और भारत में झारखंड पार्टी की स्थापना 1949, झारखंड पार्टी की औपचारिक स्थापना 5 मई 1949 को हुई थी। और इसी के साथ आपको बता दूं कि आज 5 मई को मनाया जा रहा है वर्ल्ड अस्थमा दिवस। तो अब ये जो है ना विश्व अस्थमा दिवस जो है, इसमें खास बात यही है दोस्तों कि सांस लेने की बहुत कष्ट होती है जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी होती है, और खास करके उन्हें धूल, गर्मी, ठंड से बहुत ही बचना रहता है, धुआं से भी। ये जो धूल है, धुआं है, ठंड है, इससे बहुत बचाव करना पड़ता है, और इन्हेलर का अपने साथ रखना बहुत ही ज़रूरी है। और क्या बताऊँ, मतलब कभी भी आप बाहर निकले और किसी को भी देखें कि सांस लेने में कष्ट हो रहा है, तो ज़रूर आगे बढ़कर दो कदम उनकी मदद तो कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी थोड़ी मदद से उनकी आयु लंबी हो जाए और उनकी सेहत जो है थोड़ी बेहतर हो जाए। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर वो इंसान जो अस्थमा पीड़ित है वो घर में ही बैठा रहे। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कम उम्र में अस्थमा होता है, तो कम से कम अगर वो ज़्यादा परेशान है तो उनको ये याद दिला दे कि आपके साथ अगर इन्हेलर है तो ज़रूर उसका इस्तेमाल करें। और अब स्टूडियो की घड़ी में समय उचला है 10:45:33, और आप सुन रहे हैं नॉन स्टॉप गपशप विद योर आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत। और जब मैं हॉबीज़ की बात कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है कि आप दिल ही दिल तो बहुत खुश हो रहे होंगे कि चलो आज हमारी कई सारी हॉबीज़ के बारे में बात हो गई। और अगर आप समय नहीं दे रहे होंगे ना अपने उस हॉबीज़ को, तो फिर से उन्हें समय दीजिए, क्योंकि जब आप उन्हें समय देंगे तो पता है क्या होगा, आप इमोशनली बहुत खुश रहेंगे, फिजिकली बहुत फिट रहेंगे और मेंटली बहुत ही स्ट्रांग रहेंगे। और फिजिकली, इमोशनली और मेंटली खुश रहना, स्ट्रांग होना, सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये तीनों लय ताल में रहेंगे ना तो बीमारियां कोसों दूर रहेंगी, और दुख दर्द का तो मतलब दुख दर्द के नाम की चिड़िया तो आपको कहीं नजर ही नहीं आएगी। और इसी बात पे अब आपको मैं सुनवाऊंगी अगला गीत। अगला गीत, जी हाँ, ये इश्क हाय जन्नत दिखाए, श्रेया घोषाल की आवाज़ में, फ्रॉम द फिल्म जब वी मेट।

अगला गीत बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये गीत वो गीत है जिसमें सेल्फ लव के बारे में है, और बहुत ही सादगी से, बहुत ही सिंप्लिसिटी से इस बात को हम समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हम दूसरों को प्यार तभी दे सकते हैं जब हम खुद से प्यार करें। तो लव यू जिंदगी, सुनते हैं आलिया भट्ट की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी डियर जिंदगी।

अब समय हो चला है कि मैं आपसे आज्ञा लूं, यानी कि आपकी रेडियो दो सिलेक्शन पर्वत आपसे आज्ञा चाहेगी और चलते चलते आप सभी के लिए फिल्म चलते चलते से आखिरी ट्रैक, मतलब आज के कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में जो लास्ट ट्रैक आप सुनेंगे आज के लिए, वो है फिल्म चलते चलते से अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में तौबा तुम्हारे ये इशारे। और ऐसा है दोस्तों कि जिंदगी का सबसे पहला मकसद यही होना चाहिए कि हम खुश रहें और खुशियां बांटें, क्योंकि जब हम खुश रहेंगे तो हम अपना काम सही से करेंगे और जब काम सही से करेंगे तो सामने वाला खुश होगा, घर के लोग खुश होंगे, बाहर के लोग खुश होंगे, और अगर सभी खुशी खुशी अपना काम करें तो फिर क्या कहने, हमारा देश जो है ना वो मतलब सफलता का परचम हमेशा लहराएगा। और ऐसे में ही अब आपसे कहूंगी कि आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

भाई एक गुलाब तो आज मुझे भी मिली, जिसके हाथ में एक बेहद ही खूबसूरत सा केला सा गुलाब था, और छज्जा तो नहीं, लेकिन मैं जैसे आ रही थी स्टूडियो की तरफ तो गाड़ी की खिड़की के बाहर मिली, और मुझसे ये जो फूल है मेरी तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा कि दीदी एक फूल ले लो ना तो मैं खाना खा पाऊंगी। और सच मानिए उस वक्त मेरा दिल जो है वो पसीज गया। फूल मैं ना भी लेती, उसको खाने के पैसे मैं दे रही थी, इतनी प्यारी सी मीठी सी एक छोटी सी परी, लेकिन फिर उसने मुझे कहा दीदी फूल नहीं लोगी, मतलब उसको मेहनत के पैसे चाहिए थे, वो नहीं चाहती थी कि मैं ऐसे ही उसको पैसे दे दूं। और फिर मैंने वो फूल लिया और वो फूल आज मेरे सामने है, और उसका जो इतर है, मतलब इस गुलाब का जो इतर है, पूरे स्टूडियो में फैल गया है, और ये खुशबू आप तक पहुंचाऊंगी मैं 4 बजे तक। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 3 का तड़का जैनिका के साथ, और हिंदी फिल्मों की खुशबू भी आप तक पहुंचाऊंगी। जो खबरें हमको उड़ती चिड़िया बता के जाती है वही खबरें मैचनी शो आपका अपना प्यारा वाला 3 का तड़का रोज लेकर आते हैं हम। आज जैनिका की बारी है, तो बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में एकदम सही समय 3:08 और 50 सेकेंड्स।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: हिंदी फिल्मी गलियारों में आजकल वैसे चर्चे हैं एक नई लव स्टोरी के, और खबर ऐसी है कि तारा सुतारिया और हैंडसम हंक आदित्य रॉय कपूर एक दूसरे के साथ हैं। दरअसल आदित्य रॉय कपूर और तारा सुतारिया जल्दी ही एक फिल्म में भी साथ नजर आने वाले हैं। वहीं अब डेटिंग की ये जो खबर आ रही है, इसके बाद बड़े पर्दे पर दोनों को साथ में देखने का जो एक रोमांच है, वो फैंस जो है वो उस रोमांच को फील कर रहे हैं और साथ में आसमान पर है। लेकिन अब ये फिल्म के लिए प्रमोशन है या वाकई दोनों साथ में है, क्योंकि इन दिनों कई इवेंट्स पर दोनों को साथ देखा गया है, तो इसी वजह से ये डेटिंग वाली जो बात है, साथ रहने की, रियल लाइफ में भी साथ रहने की जो बात है, ये चर्चा में है आजकल। तो देखना ये है कि फिल्म जब रिलीज़ होती है उसके बाद भी क्या दोनों साथ रहते हैं, यानी ये केवल फिल्म प्रमोशन है या सच में कुछ हो रहा है। आपको क्या लगता है? आप ये गाना सुनते सुनते डिसाइड कीजिए। आशिकी 2 से आप सबके लिए अरिजीत सिंह, पलक मुच्छल।

सुन रहे हैं आप FM रेनबो पर तीन का तड़का, जैनिक आया आपके साथ हाजिर। 3:20:55 फिलहाल स्टूडियो की घड़ी एकदम सही समय बता रही है और थोड़ा सा आपको रेट्रो मूड मैं अभी चाहती हूँ कि आपका बने, आपको ले जाऊँ उस मूड में। तो बताऊँ कि रेखा की बेहद खास फिल्म 1981 की क्लासिक उमराव जान का रीस्टोर्ड 4K संस्करण यूरोप में प्रीमियर के लिए तैयार है और ये प्रीमियर लंदन में आयोजित होने वाले टंग्स ऑन फायर यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में होगा। फिल्म का प्रदर्शन लंदन के BFI IMAX ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट में किया जाएगा और ये प्रीमियर इसी पहले हफ्ते में निर्धारित है। और फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद निर्देशक मुजफ्फर अली एक विशेष बातचीत के लिए उपस्थित रहेंगे और इस फिल्म फेस्टिवल में उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। और जब बात छिड़ी अमराव जान की तो एक गीत यहाँ पर तो बनता है, तो चलिए ना सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत आशा भोसले की आवाज़ में। और आपको याद है ना इस फिल्म में संगीत किसका था, संगीत खयाम का था और शारियार ने इस फिल्म के गीत लिखे थे। चलिए सुनते हैं ये गीत, उसके बाद मैं लौटती हूँ। जारी है, जारी रहेगा 4 बजे तक

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: जारी है आपका अपना मैटनी शो, जहाँ पर हम करते हैं सिनेमा की बातें, तीन का तड़का जैनिका के साथ सुन रहे हैं आप इस रेनबो पर। 3:27 और 16 सेकंड्स फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में, एकदम सही समय। और आपको बताऊं कि हाल ही में मिली खबरों के अनुसार ऑस्कर यानी एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने 2027 के 99 अकादमी पुरस्कारों के लिए नियमों में कुछ बेहद ज़रूरी बदलाव किए हैं, रीवैम्प लेकर आए हैं। और इन बदलावों का उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो प्रविष्टियां होती हैं, एंट्रीज होती है, वो बढ़ें और अभिनय श्रेणियों को अधिक फ्लेक्सिबल बनाना चाहती है अकेडमी। तो इसके हिसाब से पता है आपको कितने सारे चेंजेस आए हैं। अब देश ऑस्कर में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी के लिए 2 फिल्में भेज सकते हैं, यानी पहले तो केवल एक फिल्म, एक देश से एक ही फिल्म की एंट्री हो सकती थी, अभी 2 फिल्में भेज सकती है कोई कंट्री। और इसके अलावा योग्यता के कुछ नए तरीके या फिर कहना चाहिए कुछ क्राइटेरियाज डेवलप करें, जैसे गैर अंग्रेजी फिल्में अब केवल सरकारी समितियों द्वारा नहीं बल्कि कान, बर्लिन, वेनिस, सनडांस, टोरंटो और बुसान जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में शीर्ष पुरस्कार जीतकर भी क्वालिफाई कर सकती हैं। बहुत अच्छी बात ये खबर। और इसके अलावा एक्टिंग रूल्स की अगर हम बात करें तो अभिनेता अब एक ही अभिनय श्रेणी में एक से अधिक प्रदर्शनों के लिए नॉमिनेट हो सकते हैं, बशर्ते कि दोनों शीर्ष 5 वोटों में शामिल हों। हम तो जानते हैं कि किस तरह की एक बहुत ही लंबी एक अवधि होती है और बहुत लंबा प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से फिल्में एकदम फाइनल लीग में पहुँचती हैं। जब ऑस्कर्स की जब हम बात करते हैं, कितनी अधिक प्रमोशन करनी होती है फिल्म की, कितने लोग देखते हैं, वोटिंग होती है, तब जाकर कहीं जो फाइनल जो नॉमिनेशन लिस्ट होती है वो तैयार होती है। तो वहां पर भी एक फेर बदल है, यानी एक अभिनेता वो 2 से अधिक अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए नॉमिनेट किए जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर ऑस्कर अवार्ड्स से जुड़ी। और हमारी तो कई फिल्मों ने अभी बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं फिलहाल कुछ सालों से, बहुत सालों से मैं कहूँगी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कुछ सालों से कि हमारी फिल्में, फीचर फिल्म्स या डॉक्यूमेंट्रीज आप जो भी कहें, वो दे आर मेकिंग अ मार्क इंटरनेशनल लेवल पर। तो वैसी एक फिल्म का गीत आपको मैं सुनवाऊँ जिसने सच में बहुत बड़े झंडे गाड़े, कुछ किया तो नहीं लेकिन प्रचार इस फिल्म को बहुत अधिक मिला था। आप समझ पा रहे हैं कि मैं कौन सी फिल्म की बात कर रही हूं। आप सोच रहे होंगे कि अभी मैं आरआरआर की बात तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिल्म ने तो अवार्ड भी जीते, और स्लमडॉग मिलियनेयर की बात कर रही हूँ, आपको शायद ऐसा लग रहा है, लेकिन नहीं, मैं आपको साल 2001 की फिल्म लगान, वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया को, मतलब उसका जिक्र मैं कर रही हूँ, 74th अकेडमी अवार्ड्स 2002 में जिसका आयोजन किया गया था, उस साल ये बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के बतौर नॉमिनेट हुई थी। मैं कह रही हूँ ना कि नॉमिनेशन मिलना इतनी बड़ी बात होती, और ये 3rd फिल्म बनी थी भारतीय जो इस ऑनर को अचीव करने में कामयाब हुई, 3rd इंडियन फिल्म टू अचीव दिस ऑनर। बहुत बड़ी बात थी अपने आप में, है ना, अवार्ड मिले या ना मिले, नॉमिनेशन मिलना ही बड़ी बात। तो इस फिल्म का गीत सुन लिया जाए, उसके बाद मैं लौटती हूँ लेकर और अधिक कुछ मेरी गपें, फिल्मी गपें, ओनली ऑन 3 का तड़का।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: क्या जानवी कपूर अपने लॉन्ग टाइम साथी शिखर पहाड़िया के साथ जल्द ही शादी करने वाली हैं? वायरल हो रही खबरों के मुताबिक ये कपल जो है इस साल के आखिर तक या फिर सितंबर और अक्टूबर के बीच पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शादी करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन ये कि इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर के पिता प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने ये साफ कहा है कि फिलहाल कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। शिखर और जाह्नवी की शादी महज एक अफवाह है, रूमर है, ये कह दिया है बोनी कपूर ने। अब ये मतलब अजब ही बात है भाई, बस सबकी आप शादी करवा दीजिए, ये तो कितना व्यक्तिगत एक मामला होता है, उनको लेने दीजिए कॉल। लेकिन लोगों को मजा आता है एक्चुअली, अब किसी भी शादी के बारे में सुनकर लोगों को लगता है कि भाई बहुत बढ़िया, मतलब उनकी ज़िंदगी तो बस अब गुलजार होने वाली, भले ही उस शादी में वो इनवाइटेड हो या ना हो, लेकिन शादियाँ उससे जुड़ी जो खबरें होती हैं वो पाकर लोगों के मन में एक अजीब सी वो कहते ना कि मतलब एक खिल जाता है उनका मन, उनको मज़ा आता है। क्यों ऐसा क्यों?

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: बाप रे, ये गाने के अंत में जो जो ये मुझे लग रहा था कि मतलब ये सुनना ही नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी क्या करें, वो गाने को कंप्लीट करता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी फिल्में होती हैं जहाँ पर जो विलेन है वो बहुत ही डरावना है या उसको देखकर आपकी रूह कांप जाती है, लेकिन दरअसल वो कमाल होता है उसके अभिनय का। यहाँ स्त्री में तो स्त्री को देखकर हम कांपे, वो थी वैसे प्रोटैगनिस्ट, लेकिन उसमें कुछ ऐसे शेड्स थे जो मतलब स्क्रीन पर आते ही लगता था कि बाप रे, ये तो बहुत ही डरावनी एक शख्स है और क्या ही करेगी फिल्म। लेकिन मतलब बहुत ही कमाल की फ्रेंचाइजी स्त्री सच में, उसके बाद स्त्री 2 भी आई, लेकिन स्त्री पहली वाली जो फिल्म थी पर्सनली मुझे वो बहुत बहुत बहुत अच्छी लगी। और मैंने

इनकी बात की तो एक ऐसे विलेन का जिक्र मैं अभी करना चाहूंगी जिन्होंने एक ही फिल्म ये नेगेटिव किरदार वाली निभाई है। एक विलेन में रितेश देशमुख क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी थी वो फिल्म, वो परफॉर्मेंस उनकी हमें हमेशा याद रहेगी, कभी हम भूलेंगे नहीं। और आज रितेश देशमुख का जिक्र मैं इसलिए करी क्योंकि उनकी नई फिल्म जो हाईली एंटिसिपेटेड एक फिल्म थी जिसको लेकर मतलब उनकी बहुत एक एम्बिशियस एक फिल्म एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट उनका राजा शिवाजी वो रिलीज हुई है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपनिंग वीकेंड उसको मिला है। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा स्लो डाउन हो गई है बॉक्स ऑफिस पर। ये फिल्म हिस्टोरिकल ड्रामा है, हम सब जानते हैं छत्रपति शिवाजी के जीवन पर ये बनी है और इसने डे 4 के जो कलेक्शंस है उसमें एक नोटिसेबल ड्रॉप देखा है और ये डिप होने के बाद भी फिल्म ने मैनेज कर लिया है कि वो तकरीबन 39 करोड़ रुपए कमा चुकी है बॉक्स ऑफिस पर। ये अच्छा ही एक हम कहेंगे अभी तक का कलेक्शन है, नो मीन फीट। और आगे ये फिल्म कैसा बिजनेस करेगी ये तो कुछ और दिन जब गुजरेंगे तो पता चल पाएगा। और एक विलेन की मैंने जब बात की तो फिर उस फिल्म का एक गीत तो चलिए सुन ही लें, बनता है गाना है ना, तो वो फिल्म की याद जब और वो और ज़्यादा जब विविड हो जाएगी। चलिए सुनते हैं बंजारा मोहम्मद इरफान की आवाज़ में एक विलेन फिल्म से।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे बिलावेड फिल्मों की अगर हम बात करें तो उनमें नाम आएगा, यकीनन आएगा, थ्री इडियट्स का। और अब ऐसी खबर आ रही है कि थ्री इडियट्स का एक सीक्वल बनेगा, फोर इडियट्स जैसी एक फिल्म बनने वाली है, जहां पर विकी कौशल को जो विचार आदान प्रदान किए जा रहे हैं डायरेक्टर और एक्टर्स के बीच, वहां पर उनको इंक्लूड किया गया है। और ये फिल्म हाईली एंटिसिपेटेड है। 2009 की थ्री इडियट्स के बाद आमिर खान ने कहा है कि ये जो फिल्म है ये फिर से बनेगी। तो आमिर खान और माधवन शर्मन जोशी के साथ चौथे इडियट जो हैं वो विकी कौशल हो सकते हैं। और ये जो डेवलपमेंट है ये बहुत इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट है। और एक उड़ती चिड़िया ने हमें बताया कि न तो मतलब न केवल उनको अप्रोच किया गया है इस रोल के लिए विकी कौशल को, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही जेन्युइन रिस्पांस दिया है। वो बहुत एक्साइटेड हैं, इस रोल को करना चाहते हैं। और देखना ये है कि किस तरह से एक फ्रेश इमोशनल थ्रेड इस नरेटिव में वो जोड़ पाएंगे। बहुत ही कमाल के अभिनेता हैं, हम सब जानते हैं। और यही है कि ये चीज़ जो है ये वाकई में फाइनलाइज होती है या नहीं, ये तो बस समय ही बताएगा। लेकिन फिल्म बनेगी अगर दोबारा से, इसका सीक्वल अगर बनेगा, तो हम सच में बहुत बहुत बहुत खुश होंगे, है ना।
2: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

और बस अब मुझे कहना है टाटा बाय बाय, समय हो चला है, केवल 2.5 मिनट शेष है मेरे और आपके बीच, और चलते चलते आप सबके लिए चलिया जवान से। और आप लोगों को 3 का तड़का आज अच्छा लगा होगा, आपको अच्छी लगी होंगी मेरी फिल्मी बातें, इसी उम्मीद के साथ टाटा बाय बाय। फिर किसी और दिन ज़रूर होगी आपसे मुलाकात इस समय इस चैनल पर, लेकिन आज शाम भी मैं हूँ 7:02 पर, आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, सुन सकते हैं प्यार भरे नगमे। तब तक के लिए सुनते रहें FM रेनबो।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छाया लोग 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छाया लोग।
2: प्यार भरे नगमे,

बिल्कुल, बाहें तो कभी भी न छूटे उनकी जिनसे आपको इश्क है। ये है ही ऐसी चीज जो दिल में जगाती है सौ सौ उम्मीदें, और उम्मीदें कैसी, सौ सौ उम्मीदें बढ़ती हैं एक एक निगाह पर, सौ सौ उम्मीदें बढ़ती हैं एक एक निगाह पर, मुझको ना ऐसे प्यार से देखा करे कोई। प्यार भरे नगमे लेकर जैन का हाजिर है आज ओनली ऑन FM रेनबो कोलकाता। छाए लोग सुन रहे हैं आप, और अभी हमने जो खूबसूरत सा गीत सुना, जो नगमा सुना प्यार भरा, वो था फिल्म परिंदा से। खुर्शीद हल्लौरी ने इस गीत को लिखा था और पंचम का संगीत था। आइए अब आपको आज के इस प्यार भरे नगमों के सफर पर आगे लिए चलें। और जैसे कि मैंने कहा कि मुझको ना ऐसे प्यार से देखा करे कोई, सच में ये जो नज़र है ना, ये कमाल कर जाती है कभी कभी, और एक बार ये अगर किसी पर रुक जाए तो फिर वो जो चीज़ है, वो जो शख्स है, वो कभी हटता ही नहीं नज़रों के सामने से।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: प्यार भरे नगमे,

भरे नगमे। एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, दो दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। आगाज़े आशिकी का मजा आप जानिए, अंजामे आशिकी का मजा हमसे पूछिए। वो जान ही गए कि हमें उनसे प्यार है, आंखों की मुखबिरी का मजा हमसे पूछिए। प्यार भरे नगमे लेकर जेने का हाजिर है ओनली ऑन FM रेनबो कोलकाता। और फिलहाल घड़ी में समय 7:39 और चलिए बिल्कुल भी वक्त जाया ना करते हुए ये जो मूड हमने बनाया है इसको बरकरार रखें और अगले गीत की तरफ रुख करें। आप सबके लिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज, और फिल्म का नाम एक कल्ट फिल्म। जैसे अगर हम लव स्टोरीज की बात करेंगे हिंदी फिल्मों की, तो उनमें इसका नाम जरूर शामिल होगा। कयामत से कयामत तक मजरू सुल्तानपुरी ने गाने लिखे थे इस फिल्म के लिए और आनंद मिलिंद ने संगीत दिया था। चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा दिन। आज का ये जो खूबसूरत सा दिन है वो इस गाने के गजब वाले दिन के साथ मैच करता है क्या आपके लिए?

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: प्यार भरे नगमे,

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक प्यार भरे नगमे।
1: चैनिका है आज साथ ऑन FM रेनबो कोलकाता और फिलहाल घड़ी में समय एकदम सही समय 7:50 और 37 सेकंड्स। प्यार भरे नगमे तो हम सुन रहे हैं, सुनवा रहे हैं आपको। और मैं बताऊं, यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ख्याल आज मुझे आया और वो इस तरह से आया कि आने वाली जो कुछ फिल्में हैं उनका जो लाइनअप है वो फिर से वो प्यार की तरफ धीरे धीरे जो है वो मुड़ रही हैं कहानियाँ। लग रहा है शायद फिल्म मेकर्स को, या फिर लगा होगा कुछ एक वर्षों पहले, कि एक चेंज आना ज़रूरी है। जो ट्रेंड है एक्शन पैक्ड फिल्म्स का, उस ट्रेंड में थोड़ा सा चेंज आने वाला है और हम दोबारा से मुड़ने वाले हैं लव स्टोरीज की तरफ। तो एक समय ऐसा था, ये जो गाने आज हम सुन रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में, 90 का दशक था और हिंदी सिनेमा में तब रेगुलरली ऐसी एंटरटेनर फिल्में बनती थी जहाँ पर एक क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था, जहाँ एक मेल प्रोटैगनिस्ट होता था और वो मतलब दुविधा में होता था, दो फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स के बीच में फंस जाता था। और ऐसा एक फॉर्मूला था ये, जहाँ पर कॉमेडी, कन्फ्यूजन, जेलसी, मिसअंडरस्टैंडिंग और एकदम फुल ब्लोन केओस हुआ करता था। साथ में इन सब के साथ जो इन सब चीज़ों को एक साथ मिला लेता था वो होता था रोमांस, लव स्टोरीज, रोमांटिक फिल्म्स। और ये त्रिकोण प्रेम की ये जो कहानियाँ हुआ करती थी हमने देखा, लेकिन फिर धीरे धीरे हमने देखा कि ये जो स्पेस है इस तरह की फिल्मों का, त्रिकोण प्रेम वाली फिल्मों का, वो स्पेस धीरे धीरे फेड हो गया, फेड आउट हो गया। फिल्म मेकर्स ने ज़्यादातर एक्शन फिल्में बनानी शुरू की, ड्रामा फिल्में, थ्रिलर्स, उधर आपका हो गया हॉरर कॉमेडी, इस तरह की अलग अलग नई तरह

की विधाएं आने लगी, लेकिन अब जो है ना लग रहा है कि फिर से ये जॉनरा एक स्मैशिंग कमबैक करेगा जब हम देख पाएंगे प्रेम त्रिकोण ऑन स्क्रीन। मैं आपको बताऊं 35 दिनों के स्पैन के अंदर ही हम कितनी सारी फिल्में देखने वाले हैं। पहले तो पति पत्नी और वो दो, जी हाँ पति पत्नी और वो दो, ये एक फिल्म आएगी आयुष्मान खुराना के साथ, सारा अली खान, वामिका गबी और रकुलप्रीत सिंह हमें नजर आएंगे। उसके बाद एक हफ्ते बाद फिल्म रिलीज होगी वरुण धवन, साथ में उनके नजर आएंगी मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े। फिल्म का नाम है जवानी तो इश्क होना है। और ठीक एक महीने बाद इस फिल्म की रिलीज के June 19 को शाहिद कपूर हमें नजर आएंगे कृति सैनन और रश्मिका मंदाना के बीच फंसे हुए कॉकटेल 2 में। इसका मतलब ये लव ट्रायंगल्स का जो युग है वो शायद अभी के लिए फिलहाल इस एक डेढ़ महीने के लिए वापस आ रहा है। एंजॉय कीजिए लव स्टोरीज। वैसे किसी एक का मन जब दुखता है ना तो अच्छा नहीं लगता, कभी भी अच्छा नहीं लगता है। लगता है ना कि सॉरी फील होता है, सैड फील होता है जब हम लव स्टोरीज ऐसी देखते हैं और किसी एक की हार हो जाती है तो उसके लिए हमारा मन बहुत रोता है। और ऐसी ही एक फिल्म थी जिसका नाम था कुछ कुछ होता है, उसका ये गाना सुनिए। और चलिए न्यूज ब्रेक की तरफ, 8:02 पर मैं लौटूंगी लेकर कार्यक्रम छाया लोग प्यार भरे नगमे।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: प्यार भरे नगमे,

화려한 나홈의 कतील शिफाई लिखते हैं, वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ न करे, मैं तुझको भूल के जिंदा रहूं खुदा न करे, रहेगा साथ तेरा प्यार जिंदगी बनकर, ये और बात मेरी जिंदगी वफा न करे, ये ठीक है नहीं मरता कोई जुदाई में, ये ठीक है नहीं मरता कोई जुदाई में, खुदा किसी को किसी से मगर जुदा न करे। सुना है उसको मोहब्बत दुआएं देती है, जो दिल पे चोट तो खाए मगर गिला न करे। दिल पे चोट लगनी तो एकदम कॉमन बात है, पक्की बात है। आप प्यार में पड़ेंगे और चोट नहीं लगेगी दिल पर, ये हो नहीं सकता। वैसे कहना चाहिए कि प्यार में उठेंगे, क्योंकि कभी भी अगर किसी ने मोहब्बत की तो उसका उत्थान ही हुआ है। उसके दिल में ये जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस है, जब जागे तो उसके अंदर की इंसानियत जागी, उसके अंदर की जो रूह है वो साफ हो गई। ये एकदम पक्की बात, एकदम सही बात। इसलिए प्यार में पड़ना, प्यार में गिरना नहीं, प्यार में उठना होता है। और प्यार में उठकर इंसान सच में चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने लगता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है प्यार होना। और कभी कभी होता यूं है कि किसी को देखते ही आपको प्यार हो जाता है, जैसे यहाँ हुआ है।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: सुन रहे हैं आप प्यार भरे नगमे चयनिका के साथ। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में समय 8:23:55 और इस दूसरे घंटे में हमने कौन कौन से गाने सुने एक बार याद दिला दूं। दिल में सनम की सूरत, फिर तेरी कहानी याद आई फिल्म से अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ में हमने गाना सुना। अनु मलिक का संगीत था और मैं आपको बताऊं कि उसके बाद मैंने आपको सुनवाया पत्थर के फूल फिल्म से SP बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज़ में तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ। नॉस्टैल हो गया ना दिल आपका। ये गाने सच में जब भी हम सुनते हैं तो लगता है कि वही जो पुराना दौर है उस दौर में हम चले गए और क्या ही सुनहरा दौर था वो। अगर हम लव स्टोरीज की बात करें, प्यार भरे नगमों की बात करें तो 90 का दशक और उसके आसपास के जो साल रहे वो सबसे उम्दा समय था प्यार भरे नगमों के लिए। और अभी अभी साजन फिल्म से मैंने आपको सुनवाया ये खूबसूरत सा गीत, कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ थी, नदीम श्रवण का संगीत था और गीतकार थे समीर। चलिए इसी कॉम्बो का, यानी नदीम श्रवण और समीर के इस कॉम्बिनेशन का एक और गीत सुना जाए। वैसे इस दफ़ा गीतकार फैज़ अनवर हैं, नदीम श्रवण ने संगीत दिया है, गीतकार फैज़ अनवर, और फिल्म का नाम दिल है कि मानता नहीं। और उसके बाद एक और गीत सुनेंगे हम अनु मलिक के संगीत में, वो गीत मैं आपको सुनवाऊंगी, कोशिश करूंगी सुनवाने की। मेरा दिल सच में चाहता है कि यहाँ पर कुछ एक गाने हम उनके सुने, जैसे फिर तेरी कहानी याद आई का गाना सुना और सच में लगा कि वही एक बात जो मैं अभी बोल रही थी वही दोहराऊंगी कि उस समय इतने खूबसूरत गीत बना करते थे, लव सॉन्ग्स, लव बैलेड्स। अभी फ़िलहाल बनते हैं गाने लेकिन उन गानों का फ्लेवर कुछ अलग है। लेकिन आप सच में अगर प्यार की तलाश में हैं या कुछ ऐसा कुछ नरम जो आपके दिल को तर कर दे तो इन्हीं गानों की शरण में आपको जाना पड़ेगा। तो चलिए सुनवाती हूँ ये गीत नदीम श्रवण के संगीत में और प्रॉमिस करती हूँ उसके बाद वाला जो गाना होगा वो अनु मलिक का एक गाना तलाश कर लाऊंगी आपके लिए। अभी फिलहाल दिल है कि मानता नहीं।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: प्यार भरे नगमे,

उनको ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है, यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों है, यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है। एक जरा हाथ बढ़ा दें तो पकड़ लें दामन, उनके सीने में समा जाए हमारी धड़कन, इतनी कुर्बत है तो फिर फासला इतना क्यों है, कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है। दिल अगर तन्हा है तो उसका सबसे अच्छा साथी हो सकता है संगीत। म्यूजिक सुनते ही दिल की सारी तन्हाई छू मंतर हो सकती है, और यही व्यवस्था, यही अरेंजमेंट हमारा रहता है आपके लिए रोजाना शाम 7:02 से ओनली ऑन एफएम रेनबो कोलकाता। और आज आप सुन रहे हैं प्यार भरे नगमे चैनिका के साथ, आज है मंगलवार की शाम, और कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको जब छोड़ूं रात 9 बजे तो आप एकदम प्यार के रंग में रंगे हुए हो, सराबोर करके छोड़ना है आपको। जिस तरह होली के रंगों में इंसान पहचाना नहीं जा सकता, वैसे ही ये जो प्यार के रंग है कुछ देर के लिए ही सही आपका रंग रूप बदल दें, बस मैं यही चाहती हूँ। और कहा था ना मैंने अनु मलिक के संगीत में एक गीत हम सुनेंगे, तो वो गाना सर फिल्म का मैंने चुना आपके लिए, और हमने दो आवाज़ एक साथ सुनी, कुमार शानू अलका याग्निक का ये ड्यूएट गाना, आपको अच्छा लगा ना। अब अगले गीत की तरफ रुख करूँ तो एक दूसरे संगीतकार जोड़ी की तरफ मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्वाद जो है, टेस्ट जो है वो थोड़ा बदला जाए। नदीम श्रवण, जतिन ललित, आनंद मिलिंद, अनु मलिक, इन सभी के गीत आज के इस कार्यक्रम में हम सुन चुके हैं। एकदम शुरुआत में पंचम का एक गाना हमने सुना था आर डी बर्मन का, और चाहती हूँ कि आज का ये कार्यक्रम आर डी बर्मन के ही एक गीत से मैं ख़त्म करूँ, लेकिन उससे पहले अभी चलिए ना फ्लेवर एकदम से बदल दिया जाए, और डर फिल्म का आपको एक गाना मैं सुनवाती हूँ शिव हरी के संगीत में, उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ें, एकदम अलग तरह का ऑर्केस्ट्रा जो अरेंजमेंट है वो एकदम अलग तरह की। ये गाना आपको वो वाले जो शाहरुख खान थे ना, एंटी हीरो शाहरुख खान, वो वाले शाहरुख खान की याद ज़रूर दिलाएगा।

सच में मुझे एक और घंटा अगर आपके साथ बिताने को मिल जाता ना तो मैं रह जाती, क्योंकि ये जो गाने हैं ना, ये सच में आपका मन कभी भरने ही नहीं देते। बस लगता है कि और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा चाहिए। यही तो मैजिक है प्यार भरे नगमों का। चयनिका अब आपसे लेगी इजाजत, और ये मैजिकल एक मोमेंट जो क्रिएट हुआ यहाँ जतिन ललित के संगीत से, मुझे पता है कि आपने बहुत एंजॉय किया। जब प्यार किसी से होता है फिल्म से ये गाना हमने सुना, आनंद बख्शी ने गीत को लिखा था, आवाज थी कुमार शानू और अलका याग्निक की। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आज का ये जो कार्यक्रम है ये मैं आरडी बर्मन की कॉम्पोजिशन के साथ यहाँ समेटूँ, तो चलिए सुनते हैं वो गाना जो शायद सबसे बेहतरीन लव सॉन्ग्स ऑफ हिंदी सिनेमा में एकदम ऊपर की श्रेणी के जो गाने हैं उनमें शामिल होगा। वो गाना आपको मैं सुनवाती हूँ, 1942 अ लव स्टोरी से जावेद अख्तर ने गाना लिखा था और आवाज़ कुमार शानू की। इस गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ एफएम रेनबो कोलकाता पर। चयनिका साइनिंग ऑफ, शुभरात्रि, गुड नाइट, खूब ख्याल रखिएगा अपना, और एफएम रेनबो छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ कहना सुनना नहीं, केवल साथ रहना है।

ये बारिश गुनगुनाती थी, इसी छत की मुंडेरों पर ये बारिश गुनगुनाती थी, इसी छत की मुंडेरों पर ये घर की खिड़कियों के कांच पर उंगली से लिख जाती थी संदेशे, ये लगती रहती है बैठी हुई अब बंद रोशनदानों के पीछे।

0: दोपहरें ऐसी लगती हैं बिना मोहरों के खाली खाने रखे हैं, न कोई खेलने वाला है बाजी और न कोई चाल चलता है।
1: लाख बार उसमें

न दिन होता है अब न रात होती है, सभी कुछ रुक गया है। वो क्या मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है।